ध्यान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं पदं मंत्र मूलं गुरु वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु

0: ओम श्रीदीप नारायण भगवान की देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म
1: की।

0: अलकपुरी जी महादेव की जय, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय, आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की, ओम हरिओम हरिओम।
1: विश्वगुरु परमांशी स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।

0: भगवान की
1: जय।
0: अलकपुरी जी महादेव
1: जय।
0: देवपुरी सा महादेव
1: जय।
0: माधव कृष्ण भगवान
1: जय।
0: ओम शांति शांति।
1: जय।

0: श्री नारायण
1: भगवान की
2: जय।
0: माता जी की
1: जय। देवपुरी स्वर्गवान की
2: जय।
1: हरिओम।

ओम श्री दीप नारायण भगवान की देव शर्मा देव की हिंदू धर्म श्री स्वामी माधवानंद जी सदगुरुदेव की ईश्वर गुरु मंडलेश्वर परम श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की श्री दीप नारायण भगवान की जय।

0: दीप नारायण
1: भगवान
0: की जय। श्री देवेश्वर महादेव की जय। श्री स्वामी माधवानंद गुरुदेव की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।
2: श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री श्री देवपुरी जी।

0: श्रीदीप नारायण भगवान की जय। श्री श्री देवपुरी जी महादेव की। श्री सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परहंस श्री स्वामी माहेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।
1: हाउ आर यू ऑल ऑफ।
2: Jak se všichni máte?
1: Thank you very much.
2: Děkuji.
1: You see that you are all our brothers and all our gurus.

भगवान की जय। श्री माधव आनंद होली गुरु जी श्री सत्ता गुरुदेव श्री दीप नारायण भगवान की जय।